तो क्या करना चाहिए? ढांकना चाहिए। मर्द को नमाज में कंधे नंगे रख के नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज का सतर है। इसी तरह औरत का नमाज में सतर क्या है? कि उसके हाथ और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म ढका हुआ हो। बाज़ उलमा के नजदीक पांव भी ढके होने चाहिए, लेकिन हनफी फिक्ह में पांव जो है उनको हाथों पर कयास करके खोलने की रुख्सत दी जाती है। बहरहाल ये इख्तिलाफ मौजूद है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये तो है, यानी पहली चीज है लिबास। लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी में जीनत भी, और रीश पर और क्या करते हैं, गर्मी सर्दी से भी बचाते हैं, वरना एक्सपोज्ड हो स्किन तो जल जाती है, तकलीफ उठाती, जख्म लग जाते हैं, ऐब छुपाते हैं। शोहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, तो वो भी एक दूसरे के ऐब ढांपने के लिए। तो लिबास की गरज जिस्म को ढांपना, जिस्म के ऐब ढांपना, गर्मी सर्दी से जिस्म को बचाना, अजियत से बचाना, और साथ जेब जीनत भी है। और लिबास ही को जीनत कहा गया, जैसे खुजू जीनत को मिंदा कुल्ली मस्जिद। इसीलिए आपको याद होगा कल मैंने जब जीनत की तशरीह की है तो मैंने उसमें जिस्म और उसके अलावा लिबास को भी जीनत करार दिया है। ये तशरीह मेरी जाती नहीं है, ये कुरान ही की आयात के हवाले से है। इसीलिए जब मुसलमान औरत हिजाब करती है जो कि आउटडोर ड्रेस है, तो उसमें इनडोर ड्रेस यानी जीनत वाले कपड़े छुपाना भी लाजिम है। क्योंकि बहुत से लोग ये हुज्जत करते हैं ना कि जब हमने कमीज शलवार पहन रखी हमारा जिस्म तो नंगा नहीं हो रहा, अब और किस हिजाब की बात करते हैं आप? तो हिजाब जो है उसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है। सूरत अन-नूर में बेसिकली सतर के अहकाम हैं कि एक औरत को अपने जिस्म को या अपनी जीनत को नामहरम मर्दों से किस तरह ढांकना चाहिए, ठीक। और जब घर से वो बाहर निकले तो उस वक्त उसका ड्रेस क्या होना चाहिए, इसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है, ठीक है। लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी के लिए, सतर नमाज के लिए इबादत के वक्त, और हिजाब घर से बाहर के लिए, ये तीन स्टेप्स हैं। सवाल है मर्द और औरत अकेले ना मिलें, क्या इसमें ड्राइवर के साथ अकेले सफर करना और टैक्सी में बैठना भी आता है? इसमें आप देखिए कि अगर टैक्सी के शीशे ट्रांसपेरेंट हैं, नजर आ रहा है सड़क पे गुजरते हुए ट्रैफिक को सब, तो उसमें आप टैक्सी के बाहर हैं या अंदर हैं बात बराबर हो जाती। रात को अकेले सफर ना करें, और ऐसी टैक्सी में जिसके ऊपर कर्टन हो कि बाहर से कुछ नजर ना आए तो तखलिया हो जाए। तखलिया क्या होता है? मर्द और औरत का ऐसी जगह अकेले मिलना जहां कोई और देख ना सकता हो, ठीक है। टैक्सी में तो सब दुनिया देख रही होती, तो इसलिए वो हुक्म फर्क हो जाता है। दो तीन दिन पहले की बात है कि रात के वक्त मेरी एक दोस्त का फोन आया इस्लामाबाद से, वो बहुत परेशान थी, तो उसने मुझे फोन किया। उनका भी खैरियत क्या वजह है? कहते कि अभी मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, ससुर उसके बीमार थे, कहते हॉस्पिटल से निकल रही थी कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत टैक्सी में है और टैक्सी आकर रुकी है और रात के 8:30-9 बजे का टाइम है और पुलिस वाला साथ निकला है। तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या है। उस वक्त आसपास कोई और औरत नहीं थी, तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आइए हमारी मदद कीजिए इस खातून को अंदर ले जाने में और रखने में, स्ट्रेचर पर डालने में, क्योंकि कोई नर्स भी खातून ड्यूटी पर नहीं थी उस वक्त।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soj Ki, aur Aap Ki, Aap Ki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: सस्पेंस।
1: और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब खत्म होने लगती है, और सुबह की कसम जब नमूदार होती है,

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو موسم آج بہت اچھا ہے۔ بادل بھی ہیں، دھوپ بھی ہیں، لیکن موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے۔ سیاسی موسم بھی اچھا بھی ہے اور ملا جلا بھی ہے۔ غیر ملکیوں کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں، ڈنمارک کے بارے میں، ڈنمارک کے شہریوں کے بارے میں، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار عدنان علی امین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر۔ عدنان آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ عدنان، آج موسم کے لحاظ سے جو سیاسی خبریں ہیں، کیا بریکنگ نیوز لا رہے ہیں؟ کیا کمیٹیوں میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے؟ بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں سیاسی۔
2: ہاں راجو صاحب، دھماکے تو کافی ہو رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی جو بن گئی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا کیا کہتے ہیں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ویل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فینس ویل، جس میں یہ سارا بجٹ وغیرہ اور وہ آتا ہے، اور اس میں بگیسٹ سرپرائز یہ ہے کہ اس کی جو چیئرمین ہیں وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انگلش لسننگ کی لڑکی ہے، جس کا نام وکٹوریا ویلسکوسیس ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ ہے مل میں امیرکا سے، مطلب کہ وہ بھی آدھا فورن میں۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایک بڑی پوسٹ پہ کیا کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ اس کا، ادھر سے بھی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اس کے اندر، اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں بیٹھ گئی ہے۔ اور اس میں سرپرائزنگ یہ ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے وہ ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے، تو مطلب کہہ لیں کہ یہ ایسی سلسلہ ہوگی جس کے اندر دونوں کا کیا کہتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ انگلش لسٹ ایک طرف جانے لگیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جانے لگیں گے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اولین کے پلسیت کے علاوہ ویسے تو ان کی کافی چیزیں آپس میں ملتی بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی پینشن کے بول پہ بولتے ہیں اور ان چیزوں پہ بولتے ہیں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا ہوپفلی اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹینتھ فال کے پچی جو ہے وہ ان پہ ساتھ ویل کے پرومنٹ پاسٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ 2024 پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیو کریں گے۔ اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے، کافی بال کیا کہتے ہیں چینج کیا گیا اور کافی کیا کہتے ہیں بال وغیرہ پھینکے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اپنا کام شروع کر دیں گے اور اپنی چیزیں کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ آف لے ہیں اور ان پہ اب کیا کہتے ہیں ایک قسم کا کام شروع ہو جائے گا۔ سیاسی بریکنگ نیوز پہ یہ بھی ہے نا کہ 11-12-13 تاریخ کو فال کے موجود ہوتی ہے پاول کے اندر، جہاں پہ یہ سارے کھڑے جاتے ہیں، تو یہ تو وہاں روانہ ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا کہتے ہیں سخت مقابلہ آئے گا، کیونکہ دو پرانے زمانے میں جس طرح ہوتے تھے بلاک، اس قسم کے بلاک آ گئے ہیں نا، کہہ رہے ہیں خود بلاک اور ایک فلو بلاک ہے، اور دیکھتے ہیں کس بار کتنے ہیوی اٹیکس ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لوکے پہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ اس نے پہ تھاوی کی ہے فلو بلاک کے ساتھ، تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں اولینی کے تپیت بھی بڑا ہارٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ موٹرس پور کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ٹینس پال کے بچی پہ کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے اور اسٹرانگ کرنا نہ ہو رہے، کیونکہ یہ کافی لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے، تو وجہ وہ یہی ہے کہ جو ٹینس پال کے بچی ہے اور تیمس کے مقاڑ ہیں، انہوں نے اولین کے پلسی کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک اور میں چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جن کے پاسپورٹ ہولڈ ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے، وہ 3-4 منتھ اور نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاسپورٹ کی طرف آئیں گے۔ جو میں نے اس کی لیٹسٹ انفارمیشن سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہم افتتاح تک پہنچ جائیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کیا اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی ہیں۔
1: عدنان، یہ جو فلمی ڈائلاگس کی طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اگر انہی سسٹم کی بات کریں تو وہ ان کی جو ہے اس ویل کی جو ہے وہ چیئرمین بن گئی ہیں انہی سسٹم والے، तो वो ज़रा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
2: यार साहब मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मिलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
1: और तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
2: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा कैपेसिटी का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, एम्प्लॉयर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टनर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा और जो इगाओगन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चरिस्ट जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तब्दील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
1: सबसे पहले जिस तरह तो बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
2: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन लोग थे लास्ट वीक ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फिनिशर स्टार्ट उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे वॉस्ट मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फेंस के वॉकवेयर नए आ गए हैं, पुराने हट गए हैं, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही इकोमोनली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये
1: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
2: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, जो उसके पास है।
1: तो अब देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं, तो आप देखना है कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
2: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनिंग पुलटिंग का जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉनले के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस पर बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लाश लोगेगा और मेरे ख्याल उनके मंत्री डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52, और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि साहब उलनिंगे पुलटिंग को नहीं चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल लें, नेपाल भी डाल लें, पैसवाल के पक्ष भी डाल लें, टेमस के मुखाड़ा भी डाल लें, तो उलनिंगे पुलटिंग जो बन गई हुई है वो वहां पर ही रहेगी और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो उन लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डैंस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना। तो ये तो गैर मुल्कियों को पूछना चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए वो बोलते क्यों नहीं है।
2: अरे सर ये तो वो उनको ही पता है ना, ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब इलेक्शन के दिनों में जो बैठ हो रही थी वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए, तो मुझे पता था मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, मेरी मेरी बीवी का राज था वो, ये कहते आज तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई। कहता हूँ कहते तुम अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करते। कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीशन सपोर्ट करनी है? तो तू, मैंने उसे कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए, वो सारा एक बार में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करूँ। मैंने कहा बात होती है आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको तब्दील करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे को मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको बोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या कुछ करें तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे। मौत में वही बयान दे अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बार आए, एक अंदर आए एक बार आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ रहा है, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ जाए इस बात को सुन सुन के और खीर में ये हो कि हम के चलो बाहर पाइए असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान ये आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे, आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
2: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे कर सके या नहीं? देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे क्योंकि वो क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो इधर अब कह लें तकरीबन 56-60 सालों से, 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की है, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो के तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: जितने भी दुश्मन मुल्क जो है हमारा मकबूजा कश्मीर में जो बर्बरियत और मजालिम ढा रहा था, हम दुनिया की तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाह रहे थे और दुनिया का हमायत हासिल करके कोशिश कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन में भी उनकी हमायत लेकर हम प्लेबिसाइट की जो करारदाद है उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। लेकिन इन लोगों की वजह से बजाय मकबूजा कश्मीर की तरफ दुनिया की तवज्जो होती, सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ आ गई है, जबकि पाकिस्तान को जिस तरीके से नेगेटिवली पेंट किया जा रहा है और पाकिस्तान को जिस तरीके से एक जालिम और गासिब के तौर पे पेश किया जा रहा है, और ये तहरीक चलाने वाले जो है ये अपनी तकरीरों में साबित कर रहे हैं, और इनके जो हमायती ओवरसीज हैं चांदे, खास तौर पर कनाडा और यूके में जिस तरीके से उन्होंने तकरीरें की हैं और आप पार्लियामेंट्स और दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट्स के अंदर जाकर पाकिस्तान का जो चेहरा मसख किया है, मैं समझता हूँ इसको सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है ना वो हिंदुस्तान को होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा मोदी को होगा। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि कश्मीर को जो महरूमियों की तो कोई ऐसी बात नहीं है, 40-50 लाख की आबादी में से इस वक्त भी 7 लेफ्टिनेंट 7 जनरल पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, जो कमांडर है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर में एक भी कोई ब्रिगेडियर भी वहां की आबादी में से उन्होंने लिया कहीं भी नहीं है। और उसके अलावा देखें यहाँ पे आपके, मैं रावला कोट से जानता हूँ कि मेरे पहले सीओ, मेरे दो सीओ रहे हैं, जनरल हयात मेरे सीओ थे, वो प्रेसिडेंट रहे हैं वहां के, अनवर थे मरहूम, अल्लाह ताला दोनों के की मगफरत करे। आप रावला कोट के ही आप देखें, या अपने मसूद साहब हैं जो अमेरिका में भी एम्बेसिडर थे, फिर चाइना में भी एम्बेसिडर थे, आप देखें ये कितने जीरक लोग हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के बहुत बड़े स्टालवर्ड्स हैं जिनका तलक रावला को एजाज अफसर साहब हैं, या मेरे दोस्त हैं और किसी जमाने में त्राबी साहब होते थे, इन लोगों की बातें देखें उनमें कश्मीर या पाकिस्तान में कोई जुदा तासर मिलते ही नहीं, वो पाकिस्तानियत की खुशबू आती है। तो मैं हाँ कश्मीर का हूँ या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का, बलूचिस्तान का हूँ, अगर मेरे लबो लहजे में, मेरे आवाज में, मेरे लफ्जों से पाकिस्तानियत की मोहब्बत की खुशबू नहीं आती तो इसका मतलब है कि मेरे में कुछ नक्स है। तो अब इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने की, और पाकिस्तान नजरिया है पाकिस्तान को, इलाके पाकिस्तान का जो हमारा एक हाब है और मौकफ है आजाद कश्मीर के हवाले से, उसको बहुत कमजोर इन्होंने किया है। दूसरी बात यह कि जब हम आजाद कश्मीर कहते हैं तो इसका मतलब है कि आजाद किससे है, ये हिंदुस्तान से आजाद है, हिंदुस्तान की बर्बरियत और जुल्म से आजाद है, और इसीलिए हम ये आजाद हैं तो इतने बड़े यानी कि जत्थों के साथ ये एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में तो वो घर से बाहर नहीं निकलने देते, ये आजाद हैं तो हर तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं, हर तरह के मतालबात मनवा लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्लाजे हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस हैं, ये आजाद ही है तो सारा कुछ कर सकते हैं ना। अगर आजाद ना होते तो इनकी हालत पे, यानी कि मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, तो यही हमारी हालत होती जो कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों की है। लेकिन ये जानते हैं, इनको पता है कि ये उनकी हालत क्या है, ये उस तरफ तितरी नोट की तरफ या चुकोठी की तरफ जाके उस तरफ आवाज नहीं लगाएंगे कि उनके ऊपर हमला करें या उनकी आजादी की बात करें। हमने तो मकबूजा कश्मीर के जो अप्रेस्ड लोग हैं उनको आजाद करवाना था, उल्टा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपनी तोपे खोल दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़े खतरनाक ट्रेंड चल पड़ी है, और जब तक ये हमारे जीरे के इस तरह मुहब वतन ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी अभी इस पैनलिस्ट में भी शामिल है, ये इनकी आवाज जो है ना कायम रहेगी, इस तरीके से सुनाई देती रहेगी, यकीनी तौर पर मसाइल हल होंगे,
1: इंशाल्लाह सुनाई देती रहेगी। कर्नल साहब आपका शुक्रिया। लोन साहब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे अगर आपने सारी चीजें सुनी है साथ साथ?
2: जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, एक बार फिर आपका शुक्रिया। जिस तरह से अभी मेरे भाई बात कर रहे हैं, देखें कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो वायलेशन हो रही है, एट्रोसिटीज हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बदकस्मती से इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं उठाई। हालांकि पिछले 4 साल से ये हकूक की बात करते हैं, लेकिन उस आसिया इंद्राबी, उस मसरत आलम भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी या किसी भी शख्स के बारे में दो लफ्ज नहीं बोले इन्होंने आज तक, तो बदकिस्मत से। दूसरा ये कि देखें आजाद कश्मीर के नौजवान को जो अपॉर्चुनिटीज हासिल है पाकिस्तान के अंदर, वो हमें नहीं है, हमारा बच्चा दिल्ली, जालंधर, जोधपुर या किसी भी रियासत में पढ़ने जाएगा उसकी लाश वापस आती है तशद्दुद ज्यादा, कोई कारोबारी, कोई ट्रेडर, कोई

0: दुनिया में जो है वो महंगाई इतनी ज्यादा है कि शायद हम तो अपने मुल्क की खबरें लेके बैठे रहते हैं, मगर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई ने इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग जो है वो खुद तंग आए हुए हैं। हुकूमतें बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रही हैं अपने लोगों को जितना भी रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। तो अब अल्लाह करे कि जो जंग है उसका कहा तो जा रहा है कि शायद आज जो है वो जंग बंदी के और जो इनका ईरान का और अमेरिका का जो मुआहिदा है वो पाकिस्तान की कोशिशों से, खास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो फील्ड मार्शल है उनकी जो कोशिशों की वजह से जंग रुकी हुई थी, और अब ये है कि जंग मुकम्मल तौर के ऊपर रुक जाएगी और इसका क्रेडिट जो है वो जरूर पाकिस्तान को जाएगा। रहती दुनिया तक जो है वो पाकिस्तान को इस हवाले से जरूर याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जंग बंदी में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा किया था।
1: अब तो तारीख हमें बताएगी, आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बड़ा रोल था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अदारों का, पाकिस्तान के लीडरान का। ये तो आने वाला वक्त और तारीख हमें बता देगी। तो अली, इसके अलावा बहुत सारे सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, सियासी तंजीमात होती हैं। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, हम अपने हकूक की तरफ नहीं जाते, हम दूसरों के हकूक की बहुत फाइट करते हैं।
0: जी बिल्कुल, यही बात है कि हमें अपनी जो है वो अपना, जिसे कहते हैं ना कि गिरेबान में झांकने की हमें आदत नहीं होती, मगर हम लोगों की हंडिया में क्या पक रहा है हम उसके ऊपर रहते हैं, और जिस वजह से कभी ना हम आगे बढ़ सकते हैं ना जो है वो लोग हमारी इन हरकतों की वजह से हमें बेहतर समझते हैं। तो सियासत हो या सोशल एक्टिविटीज हो, जब तक हम अपने काम से काम नहीं रखेंगे, अपना जो है वो कह लें कि उल्लू सीधा नहीं करेंगे, अपने मामलात सेट नहीं करेंगे, तो बाहर के मामलात में हमें जब को पूछता ही नहीं या जब बाहर हमें को पूछेगा ही नहीं, तो हमारा उनमें सोचना ना सोचना जो है वो उसका कोई ना फायदा है ना कोई किसी को फर्क पड़ना है। तो अगर हमने अपने हालात को बेहतर करना है, यहाँ पे हो या पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में पाकिस्तानी जाते हो, तो उन्हें जो है वो अपना तौर तरीका सही करना होगा, अपना जो है वो मामला ठीक करने होंगे, ताकि जो है वो आपकी इज्जत भी हो और आपके मुल्क में जो है वो मामला बेहतर भी हो। अभी पाकिस्तान में भी देख लीजिए कि हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी पड़ी होती है, मगर जो है वो मुल्क के मामला का किसी को कोई नहीं है, वो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि जब हम आएंगे तो ठीक कर लेंगे, और जब आते हैं तो फिर वो पहला भी जो है वो सत्यानाश मार के वो साइड पे हो जाते हैं। तो ये जो है ये चीजें हमें देखनी होगी, बाकी अल्लाह जो है वो बेहतर करेगा।
1: अली, पाकिस्तान सबका होता है तो सबका पाकिस्तान होता है, या पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सियासी जमातें इनका पाकिस्तान है?
0: नहीं जी, पाकिस्तान को जो अपना समझेगा पाकिस्तान उसका है, अगर मैं या पाकिस्तान को अपना नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान जो है वो शायद हमारा उस तरह ना बन सके, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने हर किसी को जो है वो नाम दिया है, पहचान दी है, इज्जत दी है। अब बहुत सारे लोग जो है वो खुद को पाकिस्तान से अगर ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं या पाकिस्तान से अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके बारे में तो ना कुछ कहा जा सकता है ना उनका कुछ किया जा सकता है। बाकी तो आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान सबका है, सियासतदानों का तो नहीं है। सियासतदान तो सिर्फ जो है वो जो जिसे कहते हैं कि थोड़े से ज्यादा हमारे मुल्क में स्मार्ट होते हैं, जो आप लोगों को इस्तेमाल करके और फिर जो है वो अपने मामला सीधे करते हैं, और आप जो हैं वो वहीं के वहीं उनके नारों का जवाब देते रह जाते हैं। तो ये तो अब अवाम को खुद सोचना होगा, कौम को खुद सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने पाकिस्तान को किस तरह अपना बनाना है।
1: अली, एक और चीज़ हमने देखा भी है, सुना भी है कि मिसाल के तौर पर अब ये हकीकत है कि जिन लोगों ने अब पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखा है, डेनिश पासपोर्ट भी रखा है, तो इस मुल्क में खड़े होकर जो है वो इसी मुल्क पर जो है वो ऐसे ऐसे फिक्रे कसने शुरू कर दें कि इस मुल्क पर हम लानत भेजते हैं, फलां पर लानत भेजते हैं। तो अब यूरोप में आपको ये नारे मिल रहे हैं कि पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान पर ना लानत भी भेजते हैं, पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर लानत भी भेजते हैं, आप क्या कहेंगे?
0: देखें जी, सबसे पहले तो हमें ऐसे लोगों पे बाजमात लानत भेजनी चाहिए अगर कोई ऐसा है, और जो जिन लोगों को ये मुल्क पसंद नहीं तो वो ये यहाँ का अगर उनके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट दें, जमा करवाएं वापस और अपने अपने घर चले जाएं जहाँ पे उनको बेहतर लगता है। और जिनको पाकिस्तान जो है वो बेहतर नहीं लगता और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का पासपोर्ट रखा हुआ है या डबल नेशनैलिटी रखी हुई है, तो सबसे पहले तो वो इतने

0: जो हैं वो हिम्मत वाले बने के अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करें और जाके कहें जी मैं जो है वो अब पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मगर बाहर से बैठ के पाकिस्तान का खाना और फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फिक्रेबाजी करना और पाकिस्तान की मुखालफत में बोलना, तो फिर तो समझ नहीं आती। फिर तो सिर्फ वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कौन सुनता है ऐसे लोगों को। ना तो हमें ऐसे लोगों को वो कोई अहमियत देनी चाहिए और ना ऐसे लोगों को जो है जिसे कहते हैं ना कि सर पे बिठाना चाहिए। जितना हम उनको अहमियत देंगे सर पे बिठाएंगे वो उतना जो है वो सर पे चढ़ेंगे। तो इनका तो हल ही यही है कि आप बस खामोश हो जाएं और इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर के पर मुंह भी ना लगाएं।
1: अली, आपने देखा कि यहाँ डेनमार्क में हाल ही में कम्यून के इलेक्शन भी हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उसके बाद दोनों जो हैं वो हुकूमतें बन गई, कम्यून्स की भी हुकूमतें बन गई, कमेटीज भी बन गई, जो डैनिश और नेशनल पार्टी है इसकी सब की सारी हुकूमतें आपस में इतफाक कर लिया, अपना एक गठ हो गया, मिलजुल कर इन्होंने हुकूमत बनाई, सारे मामला चलते रहते हैं। जब हम नहीं कहते हम जमहूरियत पसंद है, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं, कोई भी जमहूरियत पर काम करें हम किसी के खिलाफ नहीं, ना ही किसी को मना करते हैं, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी जमहूरियत में हम उस तरह का हिस्सा नहीं लेते। वो हिस्सा लेते भी हैं तो अपने मफाद के लिए लेते हैं, और ज्यादातर जो पाकिस्तान की सियासी तंजीमत जमातें हैं उस पर हम ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं। तो अब देखें कि किसी ने जो डैनिश सियासत की है तो अब एक जो है वो बैकग्राउंड अफगानी बैकग्राउंड की मुसलमान जो है वो जो इस मुल्क की वजीर बन गए, तो जमहूरियत तो सबको देती है कुछ।
0: जी, जमहूरियत तो सबको बिल्कुल सारों को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज देती है। अब मसला यहाँ पे वही है जो आप कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे रह के हम पाकिस्तान की मुखालफत भी करते हैं, हमने सियासत भी पाकिस्तान की करनी है, और जहाँ पे आपने रहना है, जहाँ पे आपको परेशानी है, मसाइल हैं, मसले हैं, वहाँ पे आप निकलते नहीं है, ना आप वोट डालने के लिए निकलते हैं, ना आप वोट मांगने के लिए निकलते हैं, ना आप इलेक्शन लड़ने के लिए निकलते हैं, और बाकी बातें जो है वो हमसे आप जितनी मर्जी करवा लें, हमारे से बड़ा जो है वो ना जमहूरियत का कोई चैंपियन होगा, ना हमसे ज्यादा सियासत का किसी को पता होगा। अभी आपने सही कहा कि अब देख लें कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, और अच्छी बात है माशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, अपने अपने कारोबार हैं। और मगर इसके अलावा हमने देखे यहाँ पे किया क्या है, हमारा जब भी कोई नाम आता है तो पाकिस्तान की बदनामी के ऊपर आता है, कभी जो है वो फ्रॉड में आ जाता है, कभी किसी और मुकदमे में आ जाता है। और इसके अलावा जो है जहाँ पे हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं वहां पे हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं कि ये फलां पाकिस्तानी पार्टी से इसका ताल्लुक है तो इसको वोट नहीं देना, इसका फलां से इसको वोट नहीं देना। अभी सबसे ज्यादा सॉरी अभी सबसे ज्यादा जो आपको वोट मिले तकरीबन 2000 के करीब जुहेर को वोट मिले। अब हालांकि देखा जाए कि उनकी भी जो है वो यहाँ पे एक अच्छी खासी फैमिली है, अच्छी खासी कैंपेन हुई, मगर हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हम एक भी अपने किसी बच्चे को, एक भी कैंडिडेट को किसी पार्टी में जो है वो उसका मेंबर नहीं बनवा सके। 2000 वोट इतने तो जो है वो ज्यादा नहीं है, और उसके बाद किसी को 1200 किसी को 1300 पड़े, तो अगर तो हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ये अफगानी हो, इराकी हो, या ये तुर्की के हों, या इंडिया के हों, जहाँ के भी हों, इन लोगों में कम से कम इस मामले में अभी ये बड़े क्लियर होते हैं कि इन्होंने किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना। आप यहाँ पे अभी कोई जो है वो इलेक्शन कम्पेन करें आपको और उसके ऊपर खाना रखें तो आप देखें पूरे का पूरा हाल भरा होता है और सारे आपको वादे करके जाएंगे, मगर अगर आप वोट डालने की जब बात आएगी तो जितने खाना खा के हैं शायद उसमें से 5-6 लोग ही आपको वोट डालें। तो हमारा जब जब तक हमारी प्रायोरिटी सिर्फ खाना खाने ही है और वो चाहे आप 10 दफा खिलवा दें तो वोट डालने वाले दिन जो है वो हम बीमार हो जाते हैं, वोट डालने वाले दिन हमारा जरूरी काम निकल आता है, वोट डालने वाले दिन हमारे जो है वो जॉब के मसाइल हो जाते हैं। तो हमारी जब हमने खाना खाने के लिए कहीं पे जाना होता है, इलेक्शन कम्पेन की जो है वो एक्टिविटीज को देखने के लिए जाना होता है, तब हमारे पास बेइंतहा टाइम होता है। ये जब हमने पाकिस्तान की सियासत करनी होती है, पाकिस्तानी सियासी जलसों में जाना होता है, फिर हमारे पास बेइंतहा टाइम होता है, मगर जब हमने कोई तमीरी काम करना होता है तो ना तो हमारे पास टाइम होता है, ना हमारे जो है वो हमें चीजों की समझ आती है, तो फिर हम जो है ना खुद वोट डालते हैं, ना किसी को उसके लिए कहते हैं कि वोट डाले, तो फिर ये जो अफगानी नजाद खातून है या इस तरह के और लोग हैं, अभी आप देख लीजिए कि ग्लेन सेक्स कमून में तुर्की का जो है वो बना है, मेयर बना है, और कितने उसके बाद बना है, सालों के बाद बना है। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए हैं। हम 50,000 के करीब यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, उसमें से अगर 20,000 लोगों को भी वोट डालने की जो है वो इजाजत हो जो पार्लियामेंट का है, तो हम 1, 2, 3, 4 कितने हम मेंबर्स पार्लियामेंट बनवा सकते हैं। और कमून के लिए तो आपको पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती, तो हमारे लिए तो ये खुद सोचने का मकाम है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, बल्कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको भी चाहिए कि अब पाकिस्तानियों या पाकिस्तानी वोटों के ऊपर तकिया ना करें। ठीक है, उनसे वोट मांगे, मगर अब आपने कितने सालों से देख लिया कि आपको कितने वोट देते हैं, तो आप अपनी नेटवर्किंग जो है, अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप डेनिशों की सियासत करें, आप उनसे भी वोट मांगें और उनकी उनको भी जो है वो इसी तरह सोशल करें, उनके लिए भी आप जलसे करें, तो फिर देखें वो शायद आपको जितवा दें। मगर अगर आप पाकिस्तानियों के सर पे रहेंगे तो मुझे तो बड़ी मायूसी, अगले 50 साल भी शायद आपका एक आधे कोई मेंबर जो है वो बने, तो उसके अलावा तो कोई, मुझे तो ऐसी समझ नहीं आती जब तक के हमारे जो वोट मांगने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा सा अपना वोट मांगने का जो दायरा है उसको बढ़ाएं और बेहतर लोगों से वोट मांगे, तो शायद उनका बहुत सारा काम हो जाए।
1: उनका बहुत सारा काम हो जाएगा। अली, इसका कोई हाल भी होना चाहिए ना, हाल बताना भी चाहिए। लेकिन जब तक हम पाकिस्तान की सियासी जमातों के यहाँ पार्किंग प्लेस बनाएंगे तो हालात तब्दील तो नहीं होंगे, फिर तो डायना सियासत नहीं हो सकेगी।
0: देखें जी, हाल तो मैंने अभी आपको बताया है ना कि अब जो पाकिस्तानी सियासतदान है उन्हें चाहिए, 4 साल हो गए ना, कि वो अगले 4 सालों के लिए मेहनत करें, अपनी सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर मेहनत ना करें, फॉरनर्स के ऊपर कर लें, डेनिशों के ऊपर कर लें, क्योंकि डेनिश तो चलें कम से कम वो आपके साथ दो नंबरी नहीं करेगा। अगर उसने आपको वोट देना है तो वो आपको कह देगा जी कि मैं आपको वोट दे दूंगा, वो ये नहीं कहेगा कि झंडा आपकी पार्टी का ऊपर लगाया होगा और वोट जो है वो किसी और को जाके दे आएगा और 50 वादे उसने किसी और से किए होंगे। कम से कम वो आपको जो है वो बेहतर तरीके से आपकी इलेक्शन का रिजल्ट मैनेज करने में वो आपकी मदद कर सकता है, और हल तो उसका यही है। इसके अलावा तो आप देख लें, जिस तरह भी आपने बात की कि आपने हर तरह की चीजें पाकिस्तानी बना ली और आपको हर तरह की पाकिस्तानी चीजें भी मिल जाती हैं, माशाल्लाह मस्जिद भी हैं, हमारे अपने स्कूल भी हैं, हमारे अपने जो हैं वो सेंटर्स भी बने हुए हैं, मगर अगर आपने इन चीजों को मजीद बेहतर करना है, इन चीजों में मजीद बेहतरी लानी है, तो आपका कोई ना कोई नुमाइंदा किसी ना किसी जगह में, बल्कि हर कमून में होना चाहिए, जो आपके आपके लिए चले काम नहीं कर सकता मगर कम से कम आपके लिए वो रहनुमाई तो कर सकता है ना कि कैसे किस तरह के काम कहाँ पे होने हैं, कैसे होने हैं। तो ये तो तभी होंगे जब आपकी अंदर कोई जो लोग आपकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, जब लोगों को आप अंदर भेजेंगे ही नहीं और फिर आप परेशानियां भी लेके आएंगे कि आपको कमून में भी मसाइल हैं, आपको हॉस्पिटल्स में भी मसाइल हैं, आपको रीजन में भी मसाइल हैं, तो फिर मसाइल तो हल नहीं होने। मसाइल तो हल तभी होंगे जब आप सोशली एक्टिव होंगे, और वो एक्टिविटी जो है वो आपकी हमारी अपनी तंजीमों से बाहर भी होनी चाहिए, ना सिर्फ जो है वो आप हमारी अपनी तंजीमों में ही लगे रहें, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि तंजीमों ने तो अपना अपना काम करके आपसे, किसी ने चंदे मांगने हैं, किसी ने आपसे जो है वो अपने काम निकलवाने हैं, और वो अपना साइड पे हो जाएंगे, आप फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने मुस्तकबिल का जो है ना वो ड्राइविंग सीट आप उसके ऊपर खुद बैठें, और बाकी जो है बेहतर तरीके से आप लोगों को ढूंढें, बेहतर लोगों से आप वोट मांगें, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं।
1: अली, एक आदमी हमारे लिसनर ने हमसे बात की, नाम में नहीं ले रहा चूंकि पर्सनली बात हो जाएगी, वो कहते हैं कि किसी रीजन के मेंबर को या कम्यून के मेंबर को या सियासतदान को फ़ोन करें तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, चार चार पांच पांच बार फ़ोन ना करें। तो जिन बंदों के पास अली मजबूरी भी होती है लेकिन फ़ोन उठाने का टाइम नहीं, आप तो फ़ोन को गलती छोड़ता ही नहीं है, आपको इतला कर देता है कि फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया था, अगर ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो उन्हें, मेरे ख्याल उन लोगों पर किसी को टाइम जो है कम्यूनिटी को नहीं ज़ाया करना चाहिए।
0: देखें, इसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं कि अब हमने भी तो एक काम बनाया हुआ है ना कि हमें कोई काम जो है वो पड़ता है तो हम कहते हैं कि सीधा फोन मिला दो, और जो है अब ये नहीं सोचते कि अगला जो आपकी तरह शायद वो मसरूफ है या नहीं है, या अगला अपने काम पे हो या ना हो, या अगला किसी खुशी गमी में मसरूफ ना हो। तो इसके 100 तरीकाकार होते हैं, अगर फोन नहीं उठा रहा तो आप उनको मैसेज छोड़ दें, और जितने उम्मीदवार भी होते हैं यहाँ पे, चाहे पार्लियामेंट के हों या जो मेंबर बने होते हैं, उनके अपने वहां पे ईमेल एड्रेसेस वगैरह भी होते हैं, वो पब्लिक होते हैं और कोई ऐसी इसमें छुपी छुपाई बात भी नहीं होती। जब आप अवामी नुमाइंदे होते हैं तो फिर आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि शायद अवामी नुमाइंदा हर किसी का फोन भी ना उठा सकता हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो अपनी पार्टी में, किसी की पार्टी में, खुशी गमी में, अपने जाती काम के ऊपर। तो इसको मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। और आप मैसेज छोड़ दें उनके मोबाइल के ऊपर, अब तो व्हाट्सएप पे आपको पता चल जाता है दूसरे मोबाइलों पे कि किसी ने आपका मैसेज देख लिया या सुन लिया या नहीं सुना। ये तो थोड़ी सी जो है वो मेच्योरिटी, जो मैसेज या फोन कर रहे हैं वो भी अगर दिखा दे तो शायद ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है।
1: ज़बरदस्त अली, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रابطے में रहेंगे, अगले जो आने वाला प्रोग्राम है उसमें भी आपको रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ कहना
0: जी
1: चाहें?
0: बोश बस जी, अभी तो मैं सिर्फ यही सब लोगों को कहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखें और जो है अपनी फैमिली को टाइम दें और अपने मुल्क के लिए कोई बेहतर करें। मैं क्योंकि अभी भी हालांकि आज छुट्टी का दिन है मगर मैं अपने काम के सिलसिले में जर्मनी में हूँ और मैं जर्मनी से आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये है कि
1: अली, इस
0: अपना
1: चीज़ का
0: अपना जो
1: किसी
0: है
1: को एहसास नहीं होता, बड़ा मज़ा होता है। आप गाड़ी में बैठे हैं और किसी घर में बैठे हैं, किसी दुकान में बैठे हैं, तो सुन रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन का नहीं पता, आपका क्या मजबूरी है, मेरी क्या मजबूरी है, मेरी क्या मसरूफियात है, आपकी क्या मसरूफियात है।
0: कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी जो आप बात कर रहे थे, अभी आपने मुझे फोन किया, हालांकि मैं अपने अपने जो ऑफिस के काम से मैं आया हुआ हूँ। मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं मैसेज कर देता कि मैं फोन नहीं उठा सकता ये वो। तो ये है कि थोड़ा सा अहमियत कुछ चीजों को देनी पड़ती है और लोगों को थोड़ा सा खुद भी मामला को अपना देखना पड़ता है कि आपने कहाँ किस चीज को कैसे लेके चलना है। तो जब आप किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो लोग भी आपको अच्छे ही मिलेंगे और जब आप किसी के साथ वो जिसे कहते हैं चालाकी करेंगे तो फिर आपसे भी बड़े बड़े चालाक लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। सिर्फ ऐसे हमें ये चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। बाकी बहरहाल अल्लाह ताला सबको हदायत दे और अपने अपने जो है उनके मामला बेहतर हों, सारों के लिए आसानियां पैदा हों। इससे ज्यादा तो हम दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जो जिस मकसद के लिए भी जो यहाँ पे आया हुआ है, अपने रोजगार के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए आसानी हो और जो है वो अपने अपने मामला तो उस तरीके से वो देखते रहे।
1: अली, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा के बाद।
0: जी पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अली जावेद जो के बात कर रहे थे आपके अपने, आपकी आवाज़ के हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप इनको देखते रहते हैं। समाइन, हर आदमी अपनी मेहनत करता है, अपने बच्चों के पेट भी पालता है, अपने मामलात को भी देखता है, तो हर आदमी को सीरियस होना चाहिए। आपको पता ना, गुलामी से बाहर निकले, जब तक आप गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। सामिन नाज़रीन, हमारा किसी से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है।
2: सामिन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह इंट्रो में कहा था आज बहुत सारे मेहमान होंगे, कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेम्बर मलिक सिकंदर सिद्दीक हमारे साथ होंगे और आपने फेसबुक पर भी देखा था और हमने टाइम भी आपको बताया था। इस वक्त कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर मलिक सिकंदर सिद्दीक हमारे साथ हैं। सिकंदर, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
3: जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी सामईन हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम।
1: वालेकुम सलाम। सिकंदर, जो कोपेनहेगन पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं और आप हमेशा आपके आर्टिकल छपते रहते हैं, हाल ही में जो एक नया आर्टिकल छपा है या छपने जा रहा है या छप चुका है, तो उसके बारे में हमारे सामाईन नाज़रीन को बताएं।
3: सबसे पहले तो राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया फिर मौका दे रहे हैं यहाँ रेडियो में बात करने का। जिस तरह की आपको पीछे आवाज आ रही होगी कि मैं इस वक्त पनहोल पे हूँ जो फॉल के मौजूद है, वो हमने इस वीकेंड में अटेंड किया है और अभी भी यहाँ पे जो एक मेले की सूरत में, एक जमहूरी खुशी की सूरत में जो है लोग अब यहाँ पे हैं और हम लोग भी, हमारी पार्टी हम लोग भी हैं, तो हम आज जो है हमारी रवानगी होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी आप आर्टिकल के पूछ रहे हैं तो उसमें हमारे दो कॉलम आ रहे हैं, एक मंडे को खैसली ताबला में आ रहा है जिसमें मैंने एक ये एनालिसिस लिखे हैं सोशल डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर, पहले वो क्या थी अब वो क्या हो गई है। अब मैं इसको आपको बारे में बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि अभी नई हुकूमत बनी है, नई हुकूमत जब बनी है तो उसमें बहुत सारे नए मिनिस्टर्स आए हैं, वो तो एक चीज है, लेकिन हर हुकूमती पार्टी के अंदर भी कि स्पोक्स पर्सन हाउसिंग का कौन होगा, स्पोक्स पर्सन हेल्थ का कौन होगा, स्पोक्स पर्सन माइनॉरिटीज के हवाले से कौन होगा, ये भी सारी चेंज आई है। इसमें सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी है उन्होंने एक नया बंदा चूज किया जिसका नाम है थॉमस क्यूएंसन, और थॉमस क्यूएंसन ने अभी बनते साथ ही एक इंटरव्यू देते हुए डीआर डेडलाइन में ये कहा, उससे ये पूछा गया कि डेनमार्क में 300,000 मुसलमान बसता है, क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये टू मच है, ज्यादा है? तो वो कैमरे में देख के कहता है हाँ ज्यादा है। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ताज्जुब हुआ कि ये कभी मोन्स क्रिस्टोप और फिर खैस को इस तरह की बातें करते थे। क्या ये हालात आ गए कि सोशल डेमोक्रेट अब इन मुसलमान की फकत वजूद पे ही उनको इतराज है? तो इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस लिखा, मैंने सोचा इस पे कि ये क्या हुआ कि ये पार्टी वो पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो बनी इसलिए कि जब सरमायादार जो था वो कहता था ओए तुम लोग जो हो वर्किंग क्लास हो तो तुम्हारी अहमियत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वर्किंग क्लास हैं तब भी आपकी अहमियत है। जब यहाँ पे जितनी भी अकलियतें हैं जितने भी लो तबका था उसको इस पार्टी ने, उनका आइडियोलॉजी ये थी कि इंसान को आप उसकी हरकतों पे जज करते हैं, उसके बैकग्राउंड पे नहीं करते, उसके एथनिक बैकग्राउंड पे नहीं करते, उसके किस क्लास से है किस तबके से है इस पे नहीं करते। तो ये पार्टी बनी और इसने इतना उरूज देखा और इतनी ये बड़ी हुई, आज भी इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनकी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये पार्टी की क्या हुआ इस पार्टी में कि आज ये नहीं कह रहे कि 300,000 क्रिमिनल मुसलमान है वो नहीं हो सकता, या 300,000 एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हैं वो नहीं हो सकते, नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान है, सिर्फ इनकी गलती ये है कि ये मुसलमान है इस वजह से ये नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा चेंज आया इनकी आइडियोलॉजी में। इसके ऊपर मैंने एक लंबा एनालिसिस लिखे है और वो कौमी अखबार में अभी आएगा मंडे के रोज, आप जरूर पढ़ना और शेयर करना। और इसके ऊपर आप देखेंगे कितना बहुत बड़ा चेंज आया है कि वो ये नहीं कह रहे कि 300,000 क्रिमिनल्स हैं तो वो इसलिए ज्यादा है तो वो नहीं होने चाहिए, या टेररिस्ट है, नहीं, कहते हैं कि 300,000 मुसलमान, तो यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप ये एक जुर्म बना के पेश कर रहे हैं। ये कभी इस तरह सोशल डेमोक्रेट पहले नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ा है कि इनमें चेंज आया है। इसके ऊपर एक हमने बहस जो है एनालिसिस लिखे हैं और कॉलम लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ इस पर बहस होगी, सियासी बहस होगी। और आपको पता है कि फिर ये अपने दिफा में बोलेंगे करेंगे। अभी पहली मेरी इनकी जो नया जो ये लेनिंग है बना है थॉमस की, इसके साथ मेरी एक आप समझ लें एक सियासी क्लैश हुआ है, और हमने मतलब वो लिखा है, उसने लिखा आगे, मैंने उसका जवाब दिया, फिर उसने लिखा, तो अब मैंने ये कॉलम लिखा है। अब देखें आप आगे क्या रिएक्शन होता है। तो बहरहाल मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी फर्क आया इनमें कि कभी ये बने ही इसलिए थे कि किसी का बैकग्राउंड जो है ना वो उसको क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई नहीं करता, आपके एक्शंस करते हैं। लेकिन आप मुसलमानों के हवाले से कहते हैं डजंट मैटर अच्छा है बुरा है, बस मुसलमान है 300,000 नहीं बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए।
1: चले सिकंदर, हम एक बात है अभी बाहर नहीं करते, चूंकि खबर है, जब तक खबर ये आएगी नहीं, जो हमारी मुलाकात होने जा रही है तो मुलाकात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब पहले बात करते थे मुसलमान की बात होती है फॉरनर की बात होती है तो थोड़ा सा फ़र्क रखा जाता था, अब ये जब बात करते हैं, अब स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं सेप्टेम्बर में, तो वो उनकी पार्टी जिस तरह डैनिश पीपल्स पार्टी है, अब उन्होंने गैर मुल्कियों को निकाल दिया, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब डेनमार्क में भी हो रहा है कि गैर मुल्की की बात नहीं की जाती, मुसलमानों की बात की जा रही है, ये दोनों चीज़ें बराबर क्यों नज़र आ रही हैं?
3: ये अनफॉर्चुनेटली यही मैं समझता हूँ जो आपने बात अभी बढ़ाई आगे, ये बेसिकली मेरे एनालिसिस का सेकंड जो स्टेप है वो यही है कि पहले रेसिज्म होती थी कलर पे, पहले रेसिज्म होती थी आपकी क्या कहते हैं जो एक आप जिसे कहते हैं गासे पे, ये अभी भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनको इतना इस्लामोफोबिया हो चुका है इस सिस्टम को, इन लोगों को, इस मतलब लोगों से मराज जो एक पोलिटिकल इलीट है कि इनको अब मुसलमान और इस्लाम के अलावा कुछ चीज नजर नहीं आती। अब अगर आप जो इस वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस की खारिजा जो है उन्होंने एक सर्वे किया, तो उसमें ये डेनमार्क का सबसे बड़ा सर्वे इस हवाले से, उसमें ये सामने आया कि 8 में से 10 जो मतलब माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं। 8 में से 10 अंदाजा लगाएं, यानी 10 बंदों में से 8 लोगों ने कहा है कि हम ये फील करते हैं, इस सर्वे में बता दिया। उसके बाद आप देखें कि जितनी भी इस वक्त जो कानून साजी होती है वो सब माइनॉरिटीज के लिए नहीं होती, वो स्पेसिफिकली उसमें मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि मुसलमान इशू है। देखे ना, अभी मेरे पिछले दिनों भी डिबेट चल रही थी, उसमें इसने, मैंने जब यही बात की, मैंने कहा कि आप सोचे जरा कि किसी सियासतदान ने टीवी पे, अब आप सब लोग आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि यही सियासतदान जिसने मुसलमानों के बारे में ये कहा है, ये उसी टीवी पे बैठ के कहता कि मैं समझता हूँ यहाँ पे 3 लाख यहूदी है और ये 2 मत है, नहीं होने चाहिए। आप जरा सोचे कि क्या हशर मच जाना था, सबने कहना था कितनी तो घटिया बात की है। लेकिन आप ये देख लें कि अब मुसलमानों के हवाले से बात हो रही है तो कोई भी नहीं कह रहा। इसलिए ये अब आप स्वीडन में भी देखें, जर्मनी में भी देखें, फ्रांस में भी देखें, बेलफास्ट में जो हो रहा है आपने देखा पिछले दिनों के बाद, लोगों को घरों को आग लगा के लोगों को भागना पड़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हालात ऐसे हैं, और मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें भी, जितने भी हम माइनॉरिटीज हैं, हम इस मुल्क के का हिस्सा है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, प्यार है, हम इधर ही रहते हैं, हमारे बच्चे भी इधर रहते हैं, हमें भी अपनी पॉलिटिकल आवाज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और ये मस्कीनों वाली सियासत जो है इसको अब छोड़ देना चाहिए।
1: सिकंदर, आप हमेशा बात करते हैं मस्कीनों वाली सियासत छोड़ देनी चाहिए, चलिए इस पर लंबा प्रोग्राम करेंगे। तो आज जिस सिलसिला में आप गए हुए थे बानहाल, तो सियासी पार्टियों के डेफिनेट लीडरान से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, रश भी होगा, तो इसमें से आपने क्या हासिल किया?
3: देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं, इसका नाम तो है फॉल्केमल, लेकिन मैंने भी इसके ऊपर एक पोस्ट भी बनाई है पिछले दिनों, ये फॉल्केमल नाम गलत है। फॉल्केमल का मतलब होता है पीपल की मीटिंग, लोगों की मीटिंग, इसका नाम रखना चाहिए इलीट टू इलीट की मीटिंग, क्योंकि ये ऐसा ऐसी जगह है, ऐसी मीटिंग है जिसमें सारे सियासतदान, सारे लॉबी करने वाले लोग, सारे एस्टेब्लिशमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे जो है इन्होंने अपने एक आयरलैंड पे, ये होता है ना कि आपने कोपेनहेगन में रखा है कि हर बंदा पहुंच भी सके, ये इन्होंने जो पनहॉल में एक आयरलैंड पे रखा हुआ है, इधर ये सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, और ये मैं समझता हूँ एक इलीट क्लब है। तो इसमें यही है कि हम जब जाते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर लोग होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन लोग नहीं होते, मतलब यही जो सियासतदान और
1: सियासी गुरु कह सकते हैं।
3: तो बात यही है कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एज अ सियासतदान इसलिए होना जरूरी है कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे सारे बड़े होते हैं, यहाँ पे बड़ी बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, ऐसे सियासतदान दूसरे मुल्क के, दूसरे जो जो मुल्क के हिस्से हैं उनके सियासतदान सबसे बातचीत होती है, डिबेट होती है। लेकिन वैसे मैं ये जरूर कहूंगा, ये मैंने भी इसमें कहता है लिखा भी है कि ये है लोगों के लिए नहीं, ये नाम गलत है, ये इलीट क्लास के लिए ये जो है मेला सजाया जाता है।
1: सिकंदर, आप कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आखिर में अपने लोगों को आप क्या पैगाम देंगे?
3: मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेलफास्ट में देखा क्या हुआ है, अब वहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और वहां पे भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा जब हर लोग बंदा कहता है कि वो यार वो तो बेलफास्ट है, यहाँ डेनमार्क में तो नहीं हो सकता, तो बेलफास्ट के शहरी हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि लोग जो है वो आपको घरों से निकालेंगे और आपके घरों को आग लगाएंगे, आपकी गाड़ियों को आग लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज एक, मैंने सोचा कि ये गरीब तबका, वर्किंग क्लास तबका, लो मिडिल क्लास तबका, जो गोरे हैं उनको इन्होंने उकताया हुआ है, उन्होंने वो बहकाया हुआ है, और वो अब उन मुसलमानों के माइनॉरिटीज के खिलाफ है, जबकि कोई इन बदबख्तों को कहे कि आपके दुश्मन आपका नेबर नहीं है, गरीब आदमी या वर्किंग क्लास आदमी, वर्किंग क्लास आदमी का घर जला रहा है और जो ऊपर इलीट बैठी है वो देख रही है तमाशा। एक काश इनको ये कोई बताता कि आप वर्किंग क्लास से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, चाहे आप गोरे हैं या काले हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आप लोग इत्तेहादी हो, आप लोगों के घर में अगर आपका चूल्हा भी नहीं चल रहा मुश्किल से, इधर भी वही हाल है, ये आपके नेबर की गलती नहीं है, ये जिसका नाम मोहम्मद है ये उसकी गलती नहीं है, ऊपर देखो, ऊपर जो एलीट बैठी है, जो सियासी फैसले कर रहे हैं, ये उन लोगों की गलती है। एक दूसरे से लड़ना आप छोड़ो, एक दूसरे के आप एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे के साथी हो। काश इन चीजों को समझ आता थी, क्योंकि ये इलीट हमेशा ये करती आई है डिवाइड एंड रूल। तो ये बताती है, ये एक गरीब को या एक मस्कीन को या एक मिडिल क्लास बंदे को कहती है कि देखो उसकी वजह से ये हो रहा है, जबकि उसका भी यही मसला है। आप लोग एक अलायंस बनाओ और एलीट से अपना हक मांगो, मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलते चलते एक बात आपसे पूछ लूं, जो आप पार्लियामेंट के जो है नेशनल पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं, तो सिकंदर आप बताएं कि जिन ममालिक में लोग रहते सियासी पनाह ली हो, तो उनकी तो डेमोंस्ट्रेशन करना कोई बंदे को बात नजर आती है सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे। जिन लोगों के पास परमानेंट रिहाइश होती है, डैनिश पासपोर्ट होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, ब्रिटिश पासपोर्ट या दुनिया में किसी का भी मुल्क का पासपोर्ट होता है, उन मुल्कों में रह कर जो है वो सियासी पार्टियों को गालियाँ देना, जो पासपोर्ट लिया हुआ है उस पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे सख्त लफाज इस्तेमाल करना, तो क्या ये कानून इजाजत देता है? अगर यहाँ डेनमार्क में कोई डैनिश पासपोर्ट के बारे में बात करना शुरू कर दे और रहता यहाँ हो?
3: देखिए मैं समझता हूँ ये भी एक मुनाफ़कत ही है। फिर आप अगर आपको देखिए सियासी क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, उसमें कोई मुझे इशू नहीं लगता। मैं खुद यहाँ पे एक सियासत को और जो उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एक पासपोर्ट को, एक मुल्क को, एक झंडे को जिसमें आप रह रहे हैं, जिसके आप शहरी हैं, उस क्या कहते हैं जमीन को, मिट्टी को और नुकसान पहुंचाना या क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ मुनाफ़कत है और गलत बात है। जिस तरह की हम पाकिस्तानी रूट से हमारे हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसी तरह डेनमार्क हमारा मुल्क है, हम इससे भी मोहब्बत करते हैं। तो ये है कि आप क्रिटिसाइज करें, आप सियासत को क्रिटिसाइज करें, सियासतदानों को क्रिटिसाइज करें, आप एक मुल्क को, पासपोर्ट को, एक जमीन को ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि बहनाल में गए हुए थे फलके म्यूज में, तो उनसे हमने बराह रास्त बातें की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहता है अगर अपनी राय देना चाहता है उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। सामान्य नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: सामान्य कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामान्य नाज़रीन, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम आज बहुत अच्छा है। बादल भी हैं, धूप भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। सियासी मौसम भी अच्छा भी है और मिला जुला भी है। गैर मुल्कियों के बारे में या हुकूमत के बारे में, डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क के शहरियों के बारे में, तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं तजिया निगार अदनान अली अमीन, हमारे साथ मौजूद है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, राजा साहब कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, आप सुनाएं। ठीक है अदनान, आज मौसम के लिहाज से जो सियासी खबरें हैं और क्या ब्रेकिंग न्यूज ला रहे हैं, क्या कमेटियों में लोगों को जगह मिल रही है, बहुत सारे धमाके हो रहे हैं सियासी।
2: हाँ राजा साहब, धमाके तो काफी हो रहे हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो टेक्निकली जो वेल्स हैं वो बन गई हैं और आस्ता आस्ता अपना क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, ये वेल होती है जिसे कहते हैं फैंस वेल, जिसमें ये सारा बजट वगैरह और वो आता है। और उसमें बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि उसकी जो चेयरमैन है वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंग्लिश लिस्टिंग की लड़की है, जिसका नाम विक्टोरिया मिल्सकूसिस है, क्योंकि वो उसकी माँ जो है वो है मेल में अमेरिका से, मतलब कि वो भी आधा। तो टेक्निकली देखा जाए एक बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं एक बैकग्राउंड उसका उधर से भी उसकी माँ है और उसका एक हिस्ट्री भी है उसके अंदर, और वो उस पर क्या कहते हैं उस सुलभ में बैठ गई है। और उसमें सरप्राइजिंग ये है कि जो वाइस चेयरमैन है वो टेस्ट करके ठीक है, तो मतलब कह लें कि ये ऐसी उलवेल होगी जिसके अंदर दोनों का क्या कहते हैं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लिश लिस्ट ने एक तरफ जाने लगेंगे और वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाने लगेंगे। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो उलने के पुलसीत के अलावा वैसे तो उनकी काफी चीजें आपस में मिलती भी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन के बोल पे बोलते हैं और इन चीजों पे बोलते हैं, तो बंदा कह सकता है वो एक किस्म का उनका होपफुली अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा ये है कि टेंथ फॉल के ऊपर चीज जो है वो इन पे असर वेल के परमानेंट पोस्ट पे बैठ गए हैं, वो 2024 से बैठे हुए थे और वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से क्या कहते हैं काफी तब्दीली आई है, काफी बॉल क्या कहते हैं चेंज किया गया और काफी क्या कहते हैं बॉल वगैरह फेंके गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अब अपना काम शुरू कर देंगे और अपनी चीजें क्या कहते हैं आस्ता आस्ता डेवलप ऑफ ले हैं और उन पे अब क्या कहते हैं किस्म का काम शुरू

0: हो जाएगा। सियासी ब्रेकिंग न्यूज पे ये भी है ना कि 11, 12, 13 तारीख को फॉल के मौजूद होती है पावल के अंदर, जहाँ पे ये सारे खड़े जाते हैं, तो ये तो वहां रवाना हो गए हैं। और डेफिनेटली वहां पे क्या कहते हैं, सख्त मुकाबला आएगा, क्योंकि दो पुराने जमाने में जिस तरह होते थे ब्लॉक, उस किस्म के ब्लॉक आ गए हैं ना, कह रहे हैं खुद ब्लॉक, और एक लो ब्लॉक है, और देखते हैं कि इस बार कितने हैवी अटैक्स एक दूसरे पे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लास्ट लोके पे तो हो रहे हैं कि वो उसने पिथावरी की है प्लो ब्लॉक के साथ, तो ये तो एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया है। उसके अंदर ये भी है कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों में उइलनी के तो पैर भी बड़ा हार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मोटरस्पोर के भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, टेंस पॉल के बच्ची पे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो वही बात है कि अब देखते हैं कि ये सूरत क्या बनती है, कि वो खड़े होते हैं कि इससे इससे और स्ट्रॉन्ग कितना ना हो जाए, क्योंकि ये काफी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वजह क्या है। तो वजह वो यही है कि जो टेंस पॉल के बच्ची है और के मुखाड़ है, उन्होंने पुलची को बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। एक और मैं चीज लोगों को बता दूं कि जिनके पास तो पासपोर्ट होल्ड हुए थे इलेक्शन की वजह से, वो 3-4 मंथ और न एक्सपेक्ट करें कि वो पासपोर्ट की तरफ आएंगे। जो मैंने उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सुनी थी वो यही था कि हम शायद इफ्ताह तक पहुंच जाए, तो अब देखते हैं कि जब बैठते हैं तो क्या क्या क्या स्टेटमेंट इस पे आती है।
1: अदनान, ये जो फिल्मी डायलॉग्स की तरह बातें की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब अगर इनिशिएशन की बात करें तो वो उनकी जो है उस वेल की जो है वो चेयरमैन बन गई हैं इनिशिएशन वाले, तो वो ज़रा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो उनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
0: यार साहब, मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला ना ना रहना हुआ, तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बेलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और मेरे ख्याल से उनने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है,
1: तो
0: और
1: दांतों के
0: मुझे
1: इलाज
0: नहीं
1: के लिए
0: लगता।
1: उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज जितना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
0: राजा साहब, उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा कैपेसिटी का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1,000 कमी है डेंटिस्ट की, टेन प्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टनर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे, और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं, जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं, और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा, और जो इराओगन है जो नई सोना मिश्रा बनी है, वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का कोई पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाने तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता था आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तबील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसको बनाया जाएगा, और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेशन करने की कोशिश की जाएगी। सबसे
1: अदनान,
0: पहले
1: जिस
0: तो
1: तरह बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
0: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है, क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है। मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना, इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन लोग थे लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैन फिनिशर स्टार्ट, उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे ओवर्स, मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस नए आ गए, पुराने हट गए हैं। तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी, सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो यही किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की, इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी। और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से जाने उन्हें, और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में, कमिंग डेज में कैसे ये पूरे
1: अदनान, कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास
0: कल्चर
1: गई है?
0: मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, करके जो उसके पास है।
1: तो अब देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं। तो अब देखना है कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
0: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनी का जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉलेज के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लोगे का और मेरे ख्याल उसके मंत्री डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52। और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि सामने पुलिस चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल रहे हैं, नेपाल भी डाल रहे हैं, पैसवाल के पक्षी भी डाल रहे हैं, तेमस के मुखाड़ा भी डाल रहे। तो उलनी की पुलिस जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी, और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डांस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से, वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना, तो ये
0: और
1: तो
0: इसको
1: गैर
0: बड़ा
1: मुल्कियों को
0: डिमांड चल
1: पूछना
0: रही है।
1: चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए हैं वो बोलते क्यों नहीं है।
0: अरे सब ये तो वो उनको ही पता है ना। ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था, इलेक्शन के दिनों में जो बैठ हो रही थी वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई, क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए, तो मुझे पता था मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, मैं ये मेरी बीवी का राज था वो ये कहते आज तेरी कहते आज तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई। कहता हूँ कहते तुम अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करते। कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीजन सपोर्ट करनी है? तो तू मैंने उसे कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए, वो सारा एक बार में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया है, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा मैं सपोर्ट करूँ। मैंने कहा बात होती है कि आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे मोटर्स को मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं, मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको पोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या कुछ करें, तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे। मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बाहर आए, एक अंदर आए एक बाहर आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ रहा है, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे के कहते कान जो है ना वो तागा पड़ते हैं इस बात को सुन सुन के, और आखिर में ये हो कि हम के चलो भारत पे असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान, ये आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे। आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
0: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है, मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे, कर सके या नहीं? देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए हैं। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे। हम तो इधर अब कह लें करीबन 56-60 सालों से, 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की है, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: ठीक है, अल्लाह हाफिज।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो के तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।